कि वे ये गीते प्रियंकर परेरा के हनिन तमा ये गीते गायने उन्हें प्रियंकर परेरा पे हिटी है हों द गाय के ये वाके मीलं गीते देव दुओ फला गया द कि अन्य मगे आदरे मगे दुओ वाके आदरे करन के ना माव अतहर गया द आदरे करन के ना अतहर गया वाके दुख हिते तीन बिय ओब माव अमतक कर लद केने उड़ तिबुन आदरे आयमी वी में वेदना आव सेमिंग मुर्दुलेस आन प्रश्न देवदुव ओया माव अतहर गया देवदुव अद मट हितन ओया मट दूर गया वगे देवदुव मगे हिते आदरे आयमी वेलाद अभी सौंदु प्रियंकर परेरा गायन देवदुव पला गया दो गीते